जीवन या त शीतलता दिइम, जीवन या त जीवित यइम, अलिना प छिगु जीवन या पला पला न्हि पुकिम। किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा। किप्स 98.3 एफएम।

जीवन यात्रा शीतलता बीमा किप्स 98.3 FM जीवन यात्रा जीवित यहीमा किप्स FM पलेना पाँच छिगु जीवन या पला पला नहीं किप्स FM छिगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 FM

जीवन या त शीतलता किम जीवन या त जीवित यैम अलिना प छेगु जीवन या पला पला न्हि फुकिम किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम।

0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
1: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।

0: हरेक शनिबार बेलुकी 10 बजे
1: एक फूल झरेर के भो एक फूल झरेर के भो
2: नेपाली सुपरहिट्स

0: Every Tuesday and Friday, 1 p.m. Wednesday, 10 p.m.
1: Timile bhane ka sara de phoera ma
2: Nepali Super Hits
0: Only on Kips FM 98.3
3: सौंदर्य स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ज मा शनिबार बेलुकी 7 बजे मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे

0: हरेक शनिबार बेलुकी 10 बजे
1: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कूटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्रैक्टर जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड बैटरी विथ ओल्ड बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी
2: संपर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू फोन नंबर 5302678 5302678 लोकेशन को लागी गूगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
3: व्हाट्स द सीक्रेट टू सक्सेस
4: सिंपल Say yes to radio advertising.
3: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
4: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
3: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
5: You can dance.
6: You can sing. All you gotta do is
7: just tune in.
6: KIPS FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
8: अब इन्टरनेट ढिलो होइन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित
9: इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुबिसु सुरक्षा
10: वाइफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इन्टरनेट
9: साथै सुबिसु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित
10: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ
8: सुबिसु छिटो पनि सुरक्षित पनि थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
11: 01-42-35-888 98-12-35-888
12: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत Just tune in, radio, naya generation ko.
13: KIPS FM 98.3 MHz presents Top 20 Bollywood Countdown Show.
14: Every Saturday 10 a.m., Monday 6 p.m. and Friday 2 p.m.

Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
1: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।

0: Kit 98.3 FM, your companion.
1: The weekly countdown show of top 10 English numbers with exclusive segments, classic choice, info house, fresh hits, and many more. Do tune into Weekly 10.
2: Time Sunday 7 p.m., Monday 9 a.m., and Thursday 2 p.m.
1: on KIPS 98.3 FM.
3: Sunao lo yaad, sunao lo geet. Bollywood Golden Hits. KIPS FM 98.3 MHz ma. Aitabar ra Mangalbar diusu 4 baje. सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं के रेडियो किप्स एफएम मा.
4: What's the secret to success?
5: Simple. Say yes to radio advertising.
4: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
5: Radio advertising, affordable, effective, and culturally close.
4: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. KIPS FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
6: Hazur. न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी.
7: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ. फोन नम्बर 5302678. 5302678. लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्. ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स.
8: यू कैन डांस,
9: यू कैन सिंग, ऑल यू गॉट टू डू इज
10: जस्ट ट्यून इन
11: KIPS FM 98.3 MHz, योर कंपेनियन,
12: द रेडियो ऑफ न्यू जेनरेशन.
13: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत.

आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईंकी रेडियो कीप्स एफएम मा।

0: नेपाल भाषाया न्याही पुसिचौं मेता
1: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज।
2: KIPS 98.3 FM, your companion.
3: KIPS 98.3 FM ma purva mechi dekhi pashchim mahakali samaka lok bhak

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

life-changing quotes. जब तिमी एक मिनट रिसाउँछौ तब खुशीका 60 सेकेन्ड तिमी गुमाउँछौ।

0: 104.3 FM.
1: कार्यक्रम कलियुग टाइम, कलियुग टाइम.
2: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा
1: सौंदर्य स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा शनिबार बेलुकी 7 बजे मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे
2: Stay connected with your favorite station, Keeps FM 98.3 MHz.
3: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
2: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 MHz and hit that follow button today.
4: Hazur. न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कूटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्रैक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टर का ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
5: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
6: What's the secret to success?
3: Simple. Say yes to radio advertising.
6: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
6: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.

0: नेपाल चलचित्रका सदाबहार गीतहरू। Wednesday and Saturday, 2 p.m. Thursday, 10 p.m. Only on Kips FM 98.3.
1: The world's full of tremendous numbers of trend and your busy schedule. Are you missing out trending English hits? If yes, the radio of new generation presents What's Trending. Trending. Just to keep you updated about trending English hits and its information. Every Saturday, 7 a.m. and Thursday, 9 p.m. Only on Kips FM 98.3 MHz. Never miss out being trendy.
2: Stay connected with your favorite station, Kips FM 98.3 MHz.
3: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
2: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Kips FM 98.3 MHz and hit that follow button today.
4: You can dance.
5: You can sing. All you gotta do is
6: just tune in.
1: Kips FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
7: काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स एकै छाना मुनि युपिएस इन्भर्टर सोलर उपलब्ध। यस पावर सप्लाई सोल्युसन हाउसमा तपाईँको घर अफिसका लागि उपयुक्त सर्टिफाइड सामानहरू उपलब्ध गराइन्छ। सोलर होस्ट वा हाइब्रिड सिस्टम, बेस्ट प्राइस डिल र कन्सल्टेसनको लागि एक विश्वासिलो नाम।
8: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678, 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
9: What's the secret to success?
3: Simple. Say yes to radio advertising.
9: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
9: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. Kips FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
10: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत। Just tune in, radio naya generation ko.
11: Sunaulo yaad, sunaulo geet. Bollywood golden hits. Kips FM 98.3 MHz ma. Aitabar ra mangalbar diusu 4 baje. सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईंकी रेडियो कीप्स एफएम मा
12: राजा मतीवा मती नायेवा ने पूछे जंगुटु खेले।
11: नेपाल भाषाया न्याही पुसे चौमेता
13: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़।

0: number 15.
1: जमाने की तरह हम भी तोड़े हैं गए।
0: मूवी
2: पति पत्नी और वो दो।
0: सॉन्ग
2: हमने वही लगाया दिल।

0: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स, कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा।
1: दिल दीवाना, बिन सजना के।
0: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं की रेडियो कीप्स एफएम मा।
2: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ
3: के
2: ई
3: ई बी
4: एस किप्स 98.3 एफएम योर कम्पानियन।
5: किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज प्रेजेंट्स टॉप 20 बॉलीवुड काउंटडाउन शो।

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.
2: Farki farki, yaw tuma, timro marko nazikai. Farki farki, basuma, timro garko nazikai.
3: Hazur, New Kathmandu Electric Electronics ma paincha, motorcycle, scooter, car, van, jeep, pickup, hatti gadi, bus, truck, excavator, ट्रैक्टर जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड बैटरी विथ ओल्ड बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी
4: संपर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू फोन नंबर 5302678 5302678 लोकेशन को लागी गूगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
5: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत जस्ट ट्युन इन रेडियो नयाँ जेनेरेसनको
6: व्हाट्स द सिक्रेट टु सक्सेस
7: सिम्पल से यस टु रेडियो एडभर्टाइजिङ
6: योर ब्रान्ड आवर वॉइस वन मेसेज थाउजन्ड्स अफ लिसनर्स
7: रेडियो एडभर्टाइजिङ अफोर्डेबल इफेक्टिभ एन्ड कल्चरली क्लोज
6: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
8: अब इन्टरनेट ढिलो होइन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित
9: इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुविसु सुरक्षा
10: वाइफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इन्टरनेट
9: साथै सुविसु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित
10: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ
11: सुबिसु छिटो पनि सुरक्षित पनि थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
12: 01-42-35-888 98-12-35-888
13: राजा मतिवा मतिनायेवा ने पुछे जांगुटु खेले
14: नेपाल भाषा या न्याय पुसे चौमेता
15: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़

0: एक्सप्रेस को साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड अलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कूटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
3: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
4: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
5: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
4: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
6: कार्यक्रम कलियुग टाइम, कलियुग टाइम।
7: कलियुग टाइम्स एवरी डे 11 to 12 p.m.

0: mal, caramelo.
1: Life Changing Quotes. रित्तो खल्ती समस्या होइना, समस्या हो रित्तो मस्तिष्क र रित्तो हृदय। यो भनाई हो जे एन डेविडसन को।

0: Life-Changing Quotes. आफूले आफैलाई नै कमजोर ठान्नु महापाप हो, यो भनाई हो स्वामी विवेकानन्दको।
1: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
2: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
1: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
3: Hazur. न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कूटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
4: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
5: You can dance.
6: You can sing. All you gotta do is
7: just tune in.
6: Keeps FM 98.3 megahertz, your companion. The radio of new generation.
8: What's the secret to success?
2: Simple. Say yes to radio advertising.
8: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
2: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
8: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
9: हामीलाई सुन्नुहोस् www.keepsfm.com मार्फत। Just tune in, radio naya generation ko.
10: Raja motiwa moti naewa ni puchi changutu khele।
11: Nepal bhasha ya nyai puchi chaumeta।
12: सुथैया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़।